0: सभा की शुरुआत करते हैं अनमोल विचार के साथ।
1: माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और ममता का सबसे सुंदर रूप है। वो बिना कुछ कहे हमारे हर दर्द को समझ लेती है और बिना थके हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती है। इस मातृत्व दिवस पर आइए हम अपनी माँ के प्रति आभार व्यक्त करें और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी दुनिया बसती है। आज ही नहीं, हर दिन अपनी माँ को प्यार, सम्मान और धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। दुनिया में सबसे सच्चा और निस्वार्थ प्यार सिर्फ माँ का होता है।
0: अनमोल विचार के पश्चात श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

श्रोताओं, किशोर व रंजना ठाकुर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। अगला भक्ति गीत सुनते हैं मधु मृदंगल की आवाज़ में।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें पुदीने की खेती के संदर्भ में। जी हाँ, पुदीने का इस्तेमाल अक्सर हम करते हैं। पुदीने से सब्जियों में, सलाद में स्वाद और महक दोनों का इजाफा होता है। साधारणतः पुदीने की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें जैपनीज मिंट, पेपरमिंट, स्पेयरमिंट और बेरगामिंट आदि प्रमुख हैं। पुदीने की पत्तियों के जूस, चटनी, शराब एवं शरबत की अच्छी महक के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पुदीने की पत्तियों में पेपरमिंट नामक तेल पाया जाता है, जिसका मुख्य अंश मेंथॉल होता है। भारत में मेंथा नामक पौधे से मेंथॉल निकालते हैं, जिसे विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। वैसे पुदीने में बहुत चिकित्सीय गुण भी है। पुदीने का इस्तेमाल पाचन को ठीक करने तथा पेट संबंधी विभिन्न तकलीफों को दूर करने के लिए घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है। हमारे देश में करीब 10,000 हेक्टेयर जमीन पर पुदीने की खेती की जाती है। जहां तक हमारे इन द्वीपों का सवाल है, हमारे इन द्वीपों में भी पुदीना आसानी से उगाया जा सकता है। पुदीने की वृद्धि के लिए जलवायु का जहां तक प्रश्न उठता है, तो इसकी वृद्धि के लिए हल्की बारिश एवं धूप दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे इन द्वीपों में उपलब्ध है। लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में पुदीने की खेती की जा सकती है, किंतु अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छी बढ़ोतरी के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जमीन का चयन करते समय हमें इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जमीन में जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। पानी रुकने वाले निचली जमीन में पुदीने की अच्छी खेती नहीं हो सकती। किसान भाइयों, अन्य फसलों की ही तरह पुदीने में भी कुछ किस्में हैं और अच्छी किस्मों का प्रयोग ही अच्छे उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। पुदीने की किस्मों में मुख्य रूप से हाइब्रिड 77, RRL 11813 आदि प्रमुख हैं। हमारे इन द्वीपों के लिए उपयुक्त पुदीने की किस्मों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग या केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एटिक सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। पुदीने का प्रजनन कटिंग से होता है। एक हेक्टेयर पुदीने की रोपाई के लिए 500 से 600 किलोग्राम पत्तियों की आवश्यकता होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले कटिंग्स या पत्तियां 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रखना ठीक होता है। खेत में गोबर की सड़ी खाद रोपाई के पहले प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही रोपण के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस तथा 35 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावे 75 किलोग्राम नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटकर प्रयोग में लाना चाहिए। पहला भाग जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाए उस समय, तथा बाकी 2 भाग को पहली एवं दूसरी कटाई के बाद प्रयोग करें। वाष्पीकरण द्वारा पुदीने से मेंथा तेल निकाला जाता है। औसतन वर्ष भर में 25 से 30 किलोग्राम तेल एक हेक्टेयर से प्राप्त होता है। सूखे के दिनों में प्रायः दीमक का प्रभाव पुदीने को हानि पहुंचाता है। इसके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप हमारे इन द्वीपों में पुदीने की खेती कर सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर पुदीने की खेती ना भी करना चाहें, तो गृह वाटिका में तो इसको आप लगा ही सकते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने

0: Now Super Giants will clash at M.A. Chidambaram Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए जलियानो का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रानीचंगा कल 11 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। जलयान अगले दिन 12 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलयान सिंधु आज सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान की यात्रा पर जाएगा। वापसी आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा के स्थान पर अब एमवी कालीघाट 14 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान का निकोबार चावरा तेरेसा कचाल ननकौड़ी माकाचुआ और अफरा बे होते हुए कैमल बे के लिए छूटेगा और 17 तारीख को रात 9 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जलयान सिंधु ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर 12 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान 14 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान कल 11 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल 11 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 11 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। अपनी अगली यात्रा पर एमवी हडबे कल ही दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। और एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा। जलयान अगले दिन 12 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:15 हुए हैं। आइए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 10 मई को हम मना रहे हैं मातृ दिवस यानी मदर्स डे। जी हाँ दोस्तों, माँ का नाम आते ही हमारे मन में एक अद्भुत शांति, सुरक्षा और निस्वार्थ प्रेम का एहसास होता है जो हर चिंता को मिटाकर एक सुकून भरी मुस्कान और स्नेहिल आशीर्वाद का एहसास कराती है। माँ तो सिर्फ माँ होती है जो हर हाल में हमें पहचान लेती है।

दोस्तों, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि प्यार का अनमोल भंडार है। माँ तो वो है जिसने अपना हर हिस्सा हमारे लिए बचाया है, अपने दुखों को छुपाकर हमेशा हमें हंसाया है, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाती, अपनी आंचल तले हमें सुरक्षित रखती।

दोस्तों, माँ की ममता, उनकी हर दुआ और उनका त्याग अतुलनीय है। हजारों गम हो फिर भी खुशी से फूल जाता हूँ। जब हंसती है मेरी माँ तो मैं हर गम भूल जाता हूँ।

0: तो दोस्तों, आज के इस खास दिन को प्यार और खुशी के साथ बिताइए। अब मैं सुनीता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष, जिसे प्रस्तुत कर रही थी सुनीता तिर्की। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस कहानी की 234वीं कड़ी।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

श्रीकांत पारगांवकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 234वीं कड़ी। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वतन के गीत।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जनसेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलने के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज

प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देशरागनी और ठीक उसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप कुछ फिल्मी गीत सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे सुधा सिंह, पंकज उधास और कंवल सिद्धू। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9:00 आप सड़क सुरक्षा सप्ताह पर जानकारी के पश्चात सुनेंगे भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत अली अहमद हुसैन और साथियों द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन प्रसारित किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सुबह 10:00। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जनता जंक्शन कार्यक्रम में आप मदर्स डे पर विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे गजल। कलाकार होंगे सलमा आगा, सोमेश कुमार व अशोक खोसला। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 आप सुनेंगे लोकप्रिय गीत। 12:30 पर होगा मलयालम कार्यक्रम जिसके तहत आप सुन पाएंगे पुराने फिल्मी गीत। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे विशु भटनागर। दोपहर 1:30 पर घर संसार कार्यक्रम में मातृ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पर चर्चाएं आप सुनेंगे। तत्पश्चात सुनिएगा आर नर्मदा की पूर्व प्रसारित वार्ता हृदय रोग और योग। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राथमिक चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी जबकि FM 100.9 MHz चैनल पर स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। 3:00 एल्बम टाइम और 3:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 5वीं कड़ी सुनिएगा शाम 4:30 पर। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। 4:45 पर समय रहेगा फिल्मी गीतों की कार्यक्रम बहारों की शाम का। तमिल कार्यक्रम होगा शाम 5:00 जिसमें आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत। 5:30 पर बांग्ला में रेडियो नाटक प्रसारित किया जाएगा। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संगीत संगनी का आनंद लीजिएगा शाम 6:00। 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम में त्रिपुरा के लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। 6:45 पर आप सुनेंगे देशगान। प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा शाम 7:05। मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनिएगा फिल्मी गीत। युवाणी में शाम 7:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर आप सुन पाएंगे रोजगार समाचार व गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10:00 सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान श्री डी श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में वीणा वादन जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 37.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 95% तथा न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 33.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:57 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:35। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 श्री विजयपुरम पहुंचेगा आज दिन में 11 बजे और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन में 11:40 पर।

ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागिनी और ठीक उसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप कुछ फिल्मी गीत सुन पाएंगे। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 आप सड़क सुरक्षा सप्ताह पर जानकारी के पश्चात सुनेंगे भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सुबह 10 बजे। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जनता जंक्शन कार्यक्रम में आप मदर्स डे पर विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे दिन में 11 बजे। तो समय याद रखिए, आज दिन में 11 बजे जनता जंक्शन कार्यक्रम में आप सुनेंगे मदर्स डे पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ जन सूचनाएं समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

0: धूप में बाहर जाने से बचें, शरीर को ढकें, ढीले एवं हल्के रंग के कपड़े पहनें।
1: धूप से बचाव के लिए छाते का प्रयोग करें।
0: पर्याप्त तरल पदार्थों को लें।
1: दिन में 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें।
2: गर्मी से करेंगे हम बचाव और अपनाएंगे ये सुझाव।
0: हीट स्ट्रोक के लक्षण प्रतीत होने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जनहित में जारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कल अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने सोमवार को नवंडा में प्रशासनिक काम की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला परिषद में नेतृत्व

नेतृत्व चयन प्रक्रिया तेज हुई। 13 मई को होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम बिगड़ने के संकेत। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका व्यक्त की।

सुबह के समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। टीवी के प्रमुख विजय आज सवेरे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पश्चिम बंगाल में कल भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद वे जोरा साको टाकुबारी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी के टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। शाम को भवानीपुर में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल नवन्ना में प्रशासनिक काम की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का लोकार्पण और सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल आगामी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की तैयारियों का भी अलग से आंकलन किया। बैठक में 2026 के तटीय स्वच्छता अभियान के रोडमैप की समीक्षा की गई, जिसे इस वर्ष 12 से 19 सितंबर तक एक सप्ताह तक देशव्यापी स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पर होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह अभियान भारत के 11,098 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में केंद्रीय एवं राज्य मंत्रालयों, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों, जिला प्रशासन, युवा संगठनों तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से संचालित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक 13 मई बुधवार को दोपहर 12 बजे उपायुक्त कार्यालय मध्योत्तर अंडमान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में 14 मई से प्रारंभ होने वाले जिला परिषद के 5वें वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। जिला परिषद में प्रथम एवं तृतीय वर्ष के लिए

0: अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि पांचवें वर्ष के लिए यह पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। एनिम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग एवं मनोरोग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 के गुणवत्तापूर्ण सर्वेक्षण चरण की शुरुआत की गई है। यह अध्ययन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार इस स्तर पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षय रोग के मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक तनाव, सामाजिक कठिनाइयों तथा उपचार यात्रा के दौरान एवं बाद की स्थितियों को समझना है। यह सर्वे टीबी मरीजों द्वारा झेली जाने वाली सामाजिक बाधाओं, उपचार संबंधी कठिनाइयों का भी अध्ययन करेगा। इसके निष्कर्ष से क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अध्ययन के तहत 3 श्रेणियों के टीबी मरीजों से गहन साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभागी के अनुभव को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें उच्च प्रोटीन युक्त पोषण भी प्रदान किया जा रहा है। यह पहल भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन मिशन और टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत एवं खाद्य सुरक्षा पहल के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन लागू किया जा रहा है। इसके तहत बागवानी क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देकर उत्पादकता बढ़ाने, श्रम पर निर्भरता कम करने तथा कृषि कार्यों की दक्षता में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र कृषि एवं अर्थव्यवस्था की प्रगति में एक संभावनाशील क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो कि MIDH की उपयोजना है, तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि मशीनीकरण उप मिशन के माध्यम से सतत आजीविका के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित कृषि मशीनीकरण उप मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण का विस्तार करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कृषि उपकरणों और कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है। MIDH के राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत बागवानी मशीनीकरण घटक में किसानों को निर्धारित मानकों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि क्षेत्र में सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही गरज एवं तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। जिला कारागार प्रात्रापुर में कल नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मादक पदार्थों की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना द्वारा IRCA कारागार विभाग तथा UDID योजना के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पुनर्वास, सुधार और समाज में पुनरुत्थान के महत्व को समझना था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कल अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने सोमवार को नवंडा में प्रशासनिक काम की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला परिषद में नेतृत्व चयन प्रक्रिया तेज हुई। 13 मई को होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम बिगड़ने के संकेत। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

देश रागनी गूंजे जब मन में उमंग जगाती है, भारत माँ की पावन माटी सबको प्यार सिखाती है। नमस्कार, सुस्वागतम देश रागनी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ सोनिया, लेकर आई हूँ ऐसे गीत जो मन में अपने देश मातृभूमि के प्रति देशभक्ति की भावना जगा दे। एक ऐसा ही गीत है फिल्म नया दौर का, जिसमें देश के वीर जवानों और देश की खूबसूरती की बात की गई है।

श्रोताओं, जब भी कभी देश के दुश्मनों ने हमें ललकारा है, देश के वीर सपूतों ने उनको करारा जवाब दिया है। एक ऐसा ही गीत कर रहे हैं आपकी नज़र फिल्म 10 से, जिसमें कहा गया है कि चाहे जितना भी जोर लगा ले, सबसे पहले होंगे हिंदुस्तानी।

देश के खातिर न जाने कितने वीरों ने प्राण गंवाए, तब जाकर आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। श्रोताओं, आज ये नमन करते हैं उन सभी देशभक्तों को और सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

माँ के कदमों तले जो जन्नत का निशान होता है, उनकी दुआओं में ही हर मुश्किल का हल होता है। थककर भी मुस्कुराती है सिर्फ बच्चों के लिए, माँ का प्यार ही असल में पूरी जिंदगी का सहारा होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हर साल मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। हमारी ओर से सभी माताओं को मदर्स डे की अनंत शुभकामनाएं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं, राजा और रंक फिल्म से। आनंद बख्शी की लिखी रचना थी, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि मदर्स डे मई माह के दूसरे रविवार को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल श्रोताओं, मदर्स डे की शुरुआत का श्रेय अमेरिका की एना जार्विस को जाता है। एना अपनी माँ एन रीव्स जार्विस से बहुत प्यार करती थी। उनकी माँ एक शांति कार्यकर्ता थी जो गृह युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा करती थी। उनकी इच्छा थी कि दुनिया में एक दिन ऐसा हो जो माताओं के बलिदान और उनके काम को समर्पित हो। तो आइए अब माताओं को समर्पित ये गीत सुनते हैं पांच कैदी फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। अंजान की लिखी रचना है, तर्ज बनाई बप्पी लहरी ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से अंतराल के बाद बने रहिएगा हमारे साथ।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िए,
2: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: श्रोताओं, ब्रेक हो चुका है पूरा और हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के साथ। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत का श्रेय अमेरिका की एना जार्विस को जाता है। जी हाँ, एना अपनी माँ की याद में 1908 में वर्जीनिया

ग्राफ्टन ने एक मेमोरियल सर्विस आयोजित की। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपनी मां का पसंदीदा फूल सफ़ेद कार्नेश बांटा। 1914 का ऐतिहासिक दिन एना जार्विस के लंबे संघर्ष और कैंपेन के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 9 मई 1914 को एक कानून पारित किया। इसमें घोषणा की गई कि हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। तो इस प्रकार मदर्स डे की शुरुआत हुई। श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा तथा यार रहमान की धुनों से सजा गीत। फिल्म है रंग दे बसंती और गायक कलाकार है लता मंगेशकर और ए आर रहमान।

श्रोताओं, हम अक्सर उन महिलाओं की कद्र नहीं करते जो अपने असीम प्रेम और देखभाल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। इसीलिए मातृ दिवस हमें उनके प्रभाव, बलिदान और स्नेहपूर्ण स्वभाव को संजोने और मनाने की याद दिलाता है। एक माँ की ही आंचल में हम अपने सारे गम भूल जाते हैं। तो आइए माँ की आंचल तले सुनते हैं फिल्म छोटा भाई का ये गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, माँ वो शख्स है जो खुद अधूरी नींद में रहकर हमारे सपनों को पूरा करती है, जो बिना किसी उम्मीद के हमें जिंदगी जीना सिखाती है। अगर आपकी मेहनत में जुनून है, आपकी कामयाबी में चमक है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उसमें आपकी माँ की दुआओं का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी माताओं को पुनः एक बार मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आपकी रेडियो दोस्त सोनिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई

0: अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के

0: समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
5: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
6: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम

0: उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalizes 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor.

आइए तो अब सुनते हैं कंवल सिद्धू की आवाज में खुमार बाराबंकी की लिखी ये रचना।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोताओं, आज के फनकार थे सुधा सिंह, पंकज उधास और कंवल सिद्धू।

श्रोताओं, आज दिन में 11 बजे प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर सुनना न भूलिएगा मदर्स डे पर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन।

रीता दीदी लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत। दोस्तों आज हम कोई साधारण बात नहीं करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे कि सड़क का सुपर हीरो कैसे बनते हैं। क्या आप तैयार हो? मुझे लग रहा है कि आप सभी जानकारी पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि आज हम सड़क सुरक्षा से संबंधित कई सारी जानकारियां जानेंगे और आप सभी को बताएंगे कि हमें सड़क पर कैसे चलना है और दूसरों को कैसे सिखाना है कि आखिर हम ट्रैफिक रूल का कैसे पालन करें। तो मेरे प्यारे नन्ही दोस्तों, जानकारी के साथ साथ गीतों का भी महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं खूबसूरत गीतों के साथ। फिर हम चलेंगे हमारे नन्हे दोस्तों की जुबानी, आकाशवाणी के 90 वर्षों का सुनहरा सफर, उनकी जुबानी।

अच्छा दोस्तों, सड़क पर चलते हुए वो तीन रंग की लाइट तो सबने देखी ही होगी, है ना? लाल, पीली और हरी लाइट। लेकिन क्या आपको पता है, ये लाइट हमसे बातें भी किया करती हैं। चलिए कैसे करती हैं जानते हैं। जब लाल लाइट जलती है तो वो चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ भाई, अभी डेंजर है। और दूसरी है पीली लाइट, जो कि मुस्कुराकर कहती है हमसे, तैयार हो जाओ, बिल्कुल भागना नहीं है, बस रेडी रहना है। और तीसरी हरी लाइट हमसे कहती है, चलो चलो, रास्ता साफ है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हरी लाइट होने पर दाएं बाएं देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग सुपरमैन

बनने की कोशिश में नियम तोड़ देते हैं। हमें उनसे बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सड़क पार करते हो हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट लेफ्ट अवश्य देखें, क्योंकि इससे आप कई सारी दुर्घटनाओं के शिकार से बच सकते हैं। एक और बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि सड़क पार कैसे किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने सड़क पर काली और सफेद धारियां देखी हैं? शायद देखी होगी, है ना? उसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ये वो जादुई रास्ता है जहाँ पैदल चलने वालों का हक सबसे पहले होता है। और हाँ दोस्तों, एक और बात, सड़क पर पकड़म पकड़ाई बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि खेलने के लिए मैदान है ना आप सभी के लिए। हमेशा सड़क के उस किनारे चले जहाँ आपको सामने से आने वाली गाड़ियाँ साफ दिखाई दे। दोस्तों, एक राज की बात आप सभी को बताऊं क्या? चलिए सुनते हैं। आप अपने मम्मी पापा के ट्रैफिक पुलिस बन सकते हैं, तो सुनिए कैसे। जैसे ही पापा बाइक स्टार्ट करें, उन्हें याद दिलाइए कि पापा हेलमेट कहाँ है, और जब मम्मी कार चलाएं तो कहो, मम्मी सीट बेल्ट लगाओ वरना मैं नहीं बैठूंगा। जब आप उन्हें समझाओगे तो वे भी समझेंगे कि अब हमारे बच्चे बहुत ही समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक छोटे यातायात पुलिस है ना, क्योंकि आपको सब चीजों की जानकारी है। तो आप सभी मुझसे वादा करिए कि आप सभी सड़क पर सावधानी रखेंगे, और हमारी असली ताकत हमारी खुद की जिम्मेदारी में है। अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको देखते हुए आपके दोस्त भी कदम बढ़ाएंगे। अगर आप अच्छी सीख सभी को देंगे तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप सभी लोगों की नज़र में एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे बच्चे बनकर उभरेंगे, है ना? तो दोस्तों, आप सभी एक छोटा सा वादा करिए, सड़क पर कभी भागेंगे नहीं और नियमों को कभी तोड़ेंगे नहीं, मेरे दोस्तों।

0: नन्हे दोस्तों, सड़क पर सुरक्षित रूप से चलना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें तो हम सड़क दुर्घटनाओं से अपने साथ साथ सभी लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि आप सभी को एक विशेष भेंट वार्ता की ओर ले चलेंगे, है ना? तो चलिए चलते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का सुनहरा सफर। विशेष भेंट वार्ता पर हमारे नन्हे दोस्तों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आपकी प्यारी दोस्त स्नेहा टोपनो से। वे कहती हैं कि उन्होंने एक छोटे से रेडियो को कैसे लोगों की आवाज से जोड़ा और उन्होंने अपनी कल्पना की दृष्टि से उसे एक छोटी सी आवाज के छोटे से पिटारे के रूप में समझा।
1: मैं स्नेहा टोपनो, कक्षा 10वीं की छात्रा, इकरा पब्लिक स्कूल, विंबरलीगंज से। रेडियो के साथ मेरा अनुभव हमेशा से ही बहुत यादगार और जादुई रहा है। बचपन का सबसे मासूम मेरा अनुभव था कि मैं सोचती थी कि रेडियो के अंदर छोटे छोटे लोग बैठे हैं जो गाते और बात करते हैं। मैं और मेरे भाई बहन तो रेडियो के पीछे वाले छेद से झांककर यह देखने की कोशिश करते थे कि आखिर लोग कहाँ छिपे बैठे हैं। मेरे लिए रेडियो एक पुरानी यादों का पिटारा भी है और आधुनिक समय का साथी भी। यह हमें धैर्य रखना सिखाता है और यह एहसास दिलाता है कि बिना कुछ देखे भी दुनिया को कितनी खूबसूरती से महसूस किया जा सकता है। रेडियो के साथ बिताए पल सिर्फ समय बिताना नहीं बल्कि मेरे यादों की एक पुरानी किताब को जीने जैसा है। रेडियो मेरे लिए सिर्फ एक डिब्बा नहीं बल्कि दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। जैसे ही सुबह सुबह आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून रेडियो पर सुनाई देती है और नींद खुल जाती है, यह धुन कानों में मिश्री जैसे घुलती है। मेरे दादाजी और पिताजी रेडियो के पास बैठकर बड़ी गंभीरता से समाचार सुनते हैं और हमें चुप रहने का इशारा करते हैं ताकि वे रेडियो से देश दुनिया की जानकारी पा सके। रविवार की सुबह मेरे लिए बेहद खास होती है क्योंकि रविवार की सुबह बाल जगत के कार्यक्रम को सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती हूँ। कार्यक्रम में कहानी, रोचक बातें, नन्हे दोस्तों से की गई बातें और हमारी दिनचर्या से जुड़ी कई सारी शिक्षा दी जाती है। साथ ही कई सारे खूबसूरत नए पुराने गानों का संगम मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। आकाशवाणी के 90 वर्षों में मेरा छोटा सा साथ मुझे बहुत खास

0: लगता है। आकाशवाणी के बाल जगत कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मुझे सुनहरा अवसर भी मिला। आकाशवाणी से जुड़ा हर कार्यक्रम हम बच्चों के लिए खूबसूरत जानकारी का अनोखा सागर है। विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक सभी क्षेत्रों में आकाशवाणी के द्वारा दी गई जानकारी मुझे बहुत ही लाभदायक लगती है। आकाशवाणी से जुड़ी हर बात हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है। आकाशवाणी का संगम चलता है और हमेशा चलता ही रहेगा। धन्यवाद।
1: हमारी अगली दोस्त मनस्वी हमसे कहती हैं कि आकाशवाणी का कार्यक्रम हमारे लिए काफी प्रेरणादायक है। सारी कहानियाँ हम बच्चों के लिए काफी लाभदायक होती हैं और हम इससे कई सारी सुंदर सुंदर जानकारियाँ सुनते हैं और कल्पना करते हैं। साथ ही हमें यह क्रिएटिविटी भी सिखाता है। रेडियो एक सुनहरा सफर है, तो सुनते हैं उनकी जुबानी, उनके अनुभव।
2: नमस्कार, मैं मनस्वी जैन बिटाला पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। दोस्तों, जिस रेडियो को हम आज देखते हैं, वह पिछले 90 वर्षों से भारत की आवाज बना हुआ है। जब हमारे दादा दादी बच्चे थे, तब से लेकर आज तक आकाशवाणी ने सूचना और मनोरंजन का एक सुनहरा सफर तय किया है। हम बच्चों के लिए आकाशवाणी एक वंडर बॉक्स जैसा है। आज के समय में हम मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से चिपके रहते हैं, जिससे हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, लेकिन रेडियो हमें देखना नहीं सोचना सिखाता है। जब रेडियो पर कोई कहानी सुनाई जाती है, तो हम अपनी आंखों को बंद करके उस जंगल, उस शेर या उस राजकुमारी की कल्पना खुद करते हैं, या हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। बाल जगत जैसे कार्यक्रमों ने ना जाने कितने हमारे दोस्तों को बोलना और गाना सिखाया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल तकनीक के विकास की कहानी नहीं है कहती, बल्कि यह भारत के बदलने की कहानी है। आज के विजुअल युग में भी आकाशवाणी की ध्वनि का जादू कम नहीं हुआ है। यह आज भी भारत की सबसे विश्वसनीय आवाज बनी हुई है। आकाशवाणी पर प्रसारित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के मन की बात और परीक्षाओं के दौरान हम अपने अनुभव साझा करते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे कम करते हैं और पढ़ाई के लिए कौन सी तकनीक अपनाते हैं। साथ ही हम अपनी आवाज के द्वारा अपनी बातों को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते हैं। हमारे जैसे सभी दोस्त आकाशवाणी के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान पा जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारी प्यारी दोस्त शिमानी हमसे कहती है, आकाशवाणी की सुरीली आवाज कानों में मिश्री घोल देती है। आज के YouTube और TV के युग में लोग रेडियो को अपना खूबसूरत साथी कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं शिवानी की जुबानी।
3: नमस्कार, मैं एस शिवानी, निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा 7वीं की छात्रा। मैं रेडियो का कार्यक्रम बचपन से सुनती आ रही हूँ। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी सभी मिलकर आकाशवाणी की सुरीली आवाज़ हर रोज सुनते हैं। रेडियो हमारे जीवन का एक खास दोस्त है। रेडियो हमें कल्पना करना सिखाता है। आज हम यूट्यूब और TV के युग में हैं, जहाँ सब कुछ आँखों के सामने होता है, लेकिन जब हम कई कहानी सुनते हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद करके अपना खुद का एक सिनेमा बनाते हैं। रेडियो पर सुनाई देने वाली हवा की आवाज़, कदमों की आहट और चिड़ियों की चहचहाट हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। टीवी देखते समय सब कुछ सामने होता है, लेकिन रेडियो सुनते समय मन ही मन हम कहानियों के पात्रों और दृश्यों की कल्पना करते हैं। यह हमारी रचनात्मक के लिए बेहतरीन है। धन्यवाद।
1: हमारी दोस्त आयरा हमसे कहती है कि आकाशवाणी पर सुनाई देने वाली हर आवाज़ हमें साफ और शुद्ध भाषा सुनने और सीखने में काफी मददगार साबित होती है। साथ ही हमारी आवाज़ अब

0: पर सुनाई जाती है तब हमें सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, तो उनकी जुबानी उनकी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग उनसे सुनते हैं।
1: मैं आयरा, कक्षा 8वीं की छात्रा, विटाला पब्लिक स्कूल से। आकाशवाणी का समय हम बच्चों के लिए एक अनोखा सा अवसर है, क्योंकि हम अपनी आकाशवाणी को 90 वर्षों तक ले जाने का सफर देख पा रहे हैं। आकाशवाणी का हमारा बाल जगत न केवल मनोरंजन कराते हैं, बल्कि मनुष्य का मानसिक ज्ञान भी बढ़ाने में मदद करता है। YouTube के शोर शराबे से दूर रेडियो की आवाज़, रेडियो की साफ और शुद्ध भाषा सुनकर हमें सही शब्द बोलने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब भी मैं अपनी आवाज़ रेडियो पर सुनती हूँ तो मेरे अंदर के आत्मविश्वास भर आता है और मेरे अंदर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ जाती है। मेरे लिए आकाशवाणी एक अदृश्य दोस्त की तरह है जो मुझे दुनिया भर की कहानियाँ सुनाता है। मेरा मानना है कि रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है जो हमारे सपनों के लिए पंख देता है। धन्यवाद।

हमारे नन्हे दोस्तों ने आकाशवाणी के लंबे वर्षों के समय को अपने अनुभव से हमारे नन्हे दोस्तों के सामने साझा किया। उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि आकाशवाणी जादुई दुनिया से जुड़ी हुई है। किसी ने कहा कि यह एक सुनहरा सफर है, किसी ने कहा कि इस युग में आकाशवाणी हमारे लिए खूबसूरत दोस्त है, यानी कि आकाशवाणी जादुई दुनिया है जिसमें हम जादुई पिटारे से आप सभी के लिए लेकर आते खूबसूरत जानकारियाँ। तो जादुई पिटारे से, जादू से जुड़ा हुआ एक गीत हमारे नन्हे दोस्तों के लिए।

0: नन्ही दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार फिर मिलेंगे इसी समय इसी स्टेशन पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका मनपसंद कार्यक्रम बाल जगत। बाय बाय। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouVin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अली अहमद हुसैन का व साथियों का शहनाई वादन। तो आइए सुनते हैं इनका शहनाई पर बजाया राग तोड़ी।

श्रोताओं, आज दिन में 11 बजे प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर सुनना न भूलिएगा मदर्स डे पर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर ये है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाए,
1: हेलो फरमाए,
0: हेलो फरमाए,
2: हेलो फरमाए,
0: हेलो फरमाए।
3: जिसके प्यार में कभी कोई शर्त नहीं होती, जिसके दुआओं में कभी थकावट नहीं होती, सारी दुनिया साथ छोड़ दे फिर भी माँ की ममता कभी कम नहीं होती। मदर्स डे के इस खास मौके पर सभी माताओं को ढेर सारा प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो सखी शिबानी। तो चलिए श्रोताओं, अब जुड़ जाइए अपने पसंदीदा फरमाइशी गीतों के साथ, क्योंकि शुरू हो चुका है कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
4: हेलो फरमाइश,
3: हेलो फरमाइश,
4: हेलो फरमाइश। जय माता दी,
3: जय माता दी जी। आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मेरा नाम पूरण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का ना उनमेल बुगला से बात कर रहा मैडम
3: जी। पूरन वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: थैंक यू मैडम, आपको और तमाम सुनने वालों को मध्य प्रदेश की हार्दिक शुभकामना मैडम। सभी माओं को मेरी तरफ से प्रणाम
3: जी, आपको भी। तो सबसे पहले बताइए, आज मदर्स डे आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं?
4: जी मैडम, मदर्स डे यही है कि आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से हमें जो भी जानकारी मिलती है तो रेडियो सुन सुन के हम पता लगाते हैं कि आज कौन सा बार है, कौन सा नहीं है। तो उसके माध्यम से आज हमने रेडियो के माध्यम से सुबह से कार्यक्रम सुना आपके, 9 बजे से कार्यक्रम आया तो बाल आता है तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। रेडियो की जानकारी दी थी तो मैं सुनता रहा मैडम, बहुत अच्छा लगा। बताया
3: जी। तो पूरन वर्मा जी, अब बताइए आपको वो कौन सा पसंदीदा गीत है जो आज आप सुनेंगे?
4: जी इसी पर, क्योंकि आज है तो इसी पर फिल्म का नाम है माँ और उसका ये गाना है माँ ही मंदिर माँ ही पूजा। और आप इजाजत दे दें तो 2-3 मित्रों को याद कर लें।
3: जी जरूर
4: जी। सबसे पहले तो शिवानी मैडम आप है
3: जी, धन्यवाद।
4: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, आदिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है और गोल्डी भाई है, पुरुषोत्तम है, पंची राम पुष्करनाथ और जितने आपके कार्यक्रम पूर्णिम मैडम जी सुन रही कार्यक्रम लाइव आपका विजयपुरम से
3: जी। तो चलिए पूरन वर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत गीत है, अपने सारे मित्रों के साथ सुनिएगा ये आपका पसंदीदा गीत। नमस्कार
4: मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मेरा नाम राधे राधे। मैं
0: नमस्कार राधे राधे जी, मेरी बात हो किन से हो रही
1: त्रिपुरा
0: है?
1: से जी, त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ जी।
0: जी संगीता देवनाथ जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, और काफी दिनों के बाद आप
0: बात
1: लोगों
0: हो रही है
1: से
0: आपसे। जी
1: जुड़ने
0: जी
1: पर मुझे बहुत खुशी आ रही है
0: जी, तो बताइए अभी आजकल क्या कर रही हैं आप?
1: जी। काफी बिजी थी काम में,
0: तो रेडियो सुनने का
1: टाइम
0: समय तो
1: ही
0: मिल
1: नहीं
0: जाता
1: किया।
0: होगा ना?
1: सुनती हूँ लेकिन ट्राई करने का मौका नहीं मिलती।
0: जी चलिए, आज बात हो रही है तो बताइए संगीता जी, कौन
1: जी
0: सा गीत सुनेंगी आज आप?
1: मुझे सुना दीजिए आंदोलन मूवी का टाइटल सॉन्ग,
0: जी
1: और कुछ दोस्तों को भी याद करने की खुशी हो रही है
0: जी
1: आज
0: दोस्तों
1: मुझे
0: का नाम
1: मौका
0: तो
1: मिला
0: जरूर लीजिएगा।
1: इसलिए।
0: संगीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के इस खास दिन में आप कोई संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? मदर्स डे,
1: जी
0: मदर्स डे के ऊपर कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
1: हर मदर को तो और बधाई।
0: जी संगीता जी, चलिए दोस्तों के नाम ले लीजिए।
1: जी आप सुनेंगे मैम, और विजय पांडे जी, रमेश जी, सिंदल बाबा जी, श्री सिंह भैया, भगवान जी, वर्मा जी, राकेश जी और अविनाश भैया।
0: तो चलिए संगीता जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: चलिए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
1: जी, अपना परिचय दीजिए।
2: बिल्कुल, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे दीदी मनोज नामदेव।
1: मनोज नामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद दीदी
1: जी। आप क्या करते हैं मनोज जी?
2: दीदी व्यवसाय सिलाई वाली जो मशीन होती है दीदी, टेलर है, कपड़े सिलते हैं दीदी
1: जी। तो अभी आजकल दुकान में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
2: क्या कहें दीदी, इस समय तो कहें कि शादी चल रही है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ एक हाथ से काम कर रहे थे, एक हाथ से आपका नंबर डायल कर रहे थे
1: जी,
2: और लग गया फोन
1: जी। तो चलिए अच्छी बात है। तो बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
2: हाँ दीदी बिल्कुल, आज सुनवादो फिल्म का नाम रहेगा दिल का क्या कसूर, उसमें एक गाना है गा रहा हूँ इसमें, फिल्म में आपकी इनायत है।
1: बहुत ही प्यारा गीत सुना है आपने मनोज जी।
2: जी
1: मैं आपसे आज जानना चाहूंगी कि आज मदर्स डे है तो मदर्स डे मनाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे?
2: बिल्कुल दीदी, मैं तो कहे कि माता पिता माँ का सबसे श्रेष्ठ है, माँ कहे कि आज अगर माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है
1: जी।
2: सबसे पहले जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मैंने माँ के पिताजी के पैर छुए थे कि आशीर्वाद दो, क्योंकि माँ है तो हम हैं, या जहान है या धरती, सब कुछ माँ के ही कहें कि बहुत बड़ा स्थान है माँ का, तो ये कहें दीदी
1: जी। मनोज जी बहुत ही दिल छू लेने वाली बातें कही आपने, तो चलिए सुनवा दें आपका ये गीत।
2: बिल्कुल दीदी, आपको और आपकी सभी टीम को दिल से बहुत धन्यवाद की इतनी मेहनत से सभी श्रोताओं की फरमाइशों को पूरी कर रहे हो आज आप, तो मेरी ओर से सभी के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद आपका भी, हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही प्यार देते रहिए।
2: बिल्कुल दीदी, आकाशवाणी कहे कि श्री बिरमपुरम केंद्र तो इतना प्यार इतना इसने हमारे श्रोताओं को देता है कि हमारे श्रोता इतनी लगातार आपके केंद्र से जुड़े हैं कि क्या कहें
1: जी। चलिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मनोज जी आपका गाना मिल चुका है, चलिए सुनते हैं आपके पसंद का गीत।
2: बहुत बहुत आपको धन्यवाद दीदी
1: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीदी। और आज मदरसा डे है, उसमें
0: क्या कहना
1: अपने
0: चाहेंगे आप?
1: भारत वर्ष की सभी माँ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ दीदी।
0: जी, और बताइए भगवान सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: दीदी हम खेती किसानी करते हैं और एक छोटे से गांव है उसमें रहते हैं दीदी।
0: जी, तो आजकल तो मौसम काफी गर्म हो रहा है, तो ऐसे
1: जी
0: में
1: दीदी।
0: खेतों
1: जी
0: में काम करते समय खुद का ध्यान आप कैसे रखते हैं?
1: हाँ दीदी, हम दोपहर में काम नहीं करते, सिर्फ सुबह शाम काम करते हैं। और हमारे इधर 42-47 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और बरसात भी कभी कभी हो जाती है दीदी।
0: जी, चलिए अच्छी बात है। और बताइए भगवान सिंह जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है दीदी राजा और रंग। गाने के बोल हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ये वाला गीत सुनना है दीदी। और कुछ दोस्तों के नाम ले सकते हैं, पहले तो
0: जी
1: हम पूरे भारतवर्ष की माँ को डेलीकेट रहेगा ये।
0: जी जरूर, दोस्तों के नाम ले
1: और
0: लीजिए।
1: हमारी बहन है पूर्णिमा जी, गजराज लोधी, केसर सिंह राजपूत जी, भरत सिंह अहिरवा जी, राम बाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति, मांगीलाल जी हैं, राकेश शिमला से, और बहन संगीता देवनाथ जी, आशुतोष देवनाथ, अविनाश तेली, करणवीर पॉल जी, पूरन वर्मा जी, सारून अंसारी जी, गोल्डी जी हैं, शिवा लोहट जी, रामवीर दादा, लोकेन्द्र वर्मा जी, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, गंगाधर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। और आपको भी डेलीकेट रहेगा। धन्यवाद
0: तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये खूबसूरत गीत। कॉल करने के लिए
1: दीदी,
0: शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो फरमाइश। हेलो,
2: मैं कश्मीर से लतीफ मोहम्मद रैना।
1: लतीफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: शुक्रिया मैडम, मेरे को आज पहली बार वहाँ पे कॉल लगा।
1: जी चलिए, अच्छी बात है। तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
2: मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है उमरा जान। लता जी की आवाज में।
1: जी
2: हाँ जी,
1: और बताइए लतीफ जी, अपने बारे में क्या करते हैं आप?
2: बस घर की खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे
1: जी आज तो छुट्टी का दिन है, परिवार वाले भी सब होंगे।
2: आज भी
1: जी,
2: आजकल मौसम भी ठीक है, यहाँ पर्यटक भी आते हैं बहुत सारा सोनामर्ग।
1: तो लतीफ जी बताइए, आज मदर्स डे पर आप सभी माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: उनको मैं मुबारकबाद कहना चाहता हूँ।
1: जी
2: हाँ जी,
1: तो लतीफ जी अपने के दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे आप?
2: बस मेरे साथ सभी श्रोता सुनेगा और आप सुनेगा।
1: जी धन्यवाद। तो चलिए सुनवाते हैं आपको उमराव जान फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: मेरा
0: कौन?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद आपका शिवानी जी।
0: जी बताइए कैसे।

0: बहुत अच्छे हैं। और आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: जी, मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए, इन दिनों क्या कर रहे हैं?
0: बस इन दिनों आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और आपके प्रोग्राम में कॉल लगा रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा लग रहा है सभी श्रोता के पसंद के जो है गाने मिल रहे हैं सुनने के लिए।
1: तो चलिए, अपना पसंदीदा गीत भी बता दीजिए।
0: तो शिवानी जी, सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी विजयपुरम की टीम को इंटरनेशनल मदर डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको, क्योंकि
1: जी, धन्यवाद।
0: आज जो आज का जो जो विशेष दिन है जो माँ के दातक की, जैसे कि आजकल जो बच्चे जो हैं, बच्चे और माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है बड़ा अटूट होता है, और इससे जो है बच्चे को जो है माँ बड़ा जो है ध्यान रखते हो, कई यादों के माँ माँ और बच्चे के बीच में।
1: बहुत ही प्यारा बात कही है आपने राकेश जी। और बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: तो बेटा मूवी का गाना सुनना है, आज मुझे माँ ने मेरा मुझको बेटा कह के बुलाया है, वो वाला गाना सुनना है।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत चुना है आपने आज के लिए।
0: तो सबसे पहले शिवानी जी आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा पूरी
1: धन्यवाद।
0: आकाशवाणी विजयपुरम की पूरी टीम को, तो पूर्ण वर्मा और भगवान सिंह परमार और मांगीलाल चंदेल और दिल्ली से धर्मवीर जी हैं और विजयपुरम से सत्यनी विष्णु कुंडू मोनिका जी हैं, पूर्णिमा जी हैं और अविनाश तेली हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता हैं और संदीप मकर हैं जलंधर पंजाब से और तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए और सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से इंटरनेशनल और मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: चलिए राकेश जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का गीत।
0: जी जी
1: नमस्कार हमसे
0: धन्यवाद,
1: जुड़ने के लिए। जी
0: जी जी धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, आपका नाम और
1: हेलो
0: कहाँ से बोल
1: नमस्ते
0: रहे हैं?
1: नमस्ते मैडम, मैं
0: नमस्ते
1: चंद्र चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आसाम शिवभूमि डिस्ट्रिक्ट से। फ्रेंड
0: जी। प्रेमोजीत जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: को प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं लास्ट पलार कार्यक्रम की है
0: जी।
1: ना,
0: पहले तो गाना
1: और
0: बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है छाइयां। गाने का बहुत ऐसे मेरे दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू जी और अलका जी को आवाजों में गाना सुना दीजिए। आज का विशेष दिन है मैडम,
0: जी।
1: आज तो हमारा पूरे विश्व में मनाया जा रहा है मृत्यु दिवस है ना।
0: जी
1: उसमें मैं सारी माताओं को मेरे प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम।
0: जी
1: और
0: आज का दिन
1: माँ
0: सिर्फ प्रेमो जी जी सेलिब्रेट करने का ही नहीं, बल्कि अपनी माँ को दिल से शुक्रिया कहने का भी दिन है ना?
1: यस यस
0: जी,
1: ओके।
0: तो चलिए,
1: मैं
0: समय भी हो चला है, चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये
1: ठीक
0: गीत।
1: है मैडम, आप अच्छा रहे, सारे श्रोताओं अच्छा रहे, आप नमस्कार, धन्यवाद,
0: जी
1: खुश
0: आइए
1: रहो।
0: सुनते हैं। नमस्कार।

तो दोस्तों इसी के साथ हेलो फरमाइश का आज का ये खूबसूरत सफ़र यहीं समाप्त होता है। अब सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी प्यारी बातों और फरमाइशों से इस दिन को और भी खास बना दिया। अब अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जनता जंक्शन।

0: जंक्शन जहां गूंजती है आपकी फरमाइशें और दिलों को छू जाती है अपनों की भावनाएं। आज का ये विशेष अंग समर्पित है उस अनमोल रिश्ते को जो प्यार है, ममता है, दुआ है, यानी कि माँ। हम लेकर आए हैं आज मदर्स डे स्पेशल, आपके संदेश, आपकी यादें और माँ को समर्पित आपके पसंदीदा गीत। तो आज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मदर्स डे पर रिकॉर्डिंग करते हुए आज हमारी सबसे पहले मुलाकात हुई मेरी से, जो कि एक 12वीं कक्षा की छात्रा हैं और ये अपनी भावनाओं को हमसे साझा करते हुए काफी भावुक भी हो गई। आइए सुनते हैं उन्हें।
1: हेलो,
2: हाय,
1: आपका नाम जान सकती हूँ?
2: कुमार मेरी जैसिका।
1: नेचर्स पार्क घूमने के लिए आई?
2: या
1: कैसा लग रहा है यहाँ पे?
2: रिलैक्स करने के लिए आई। एक्चुअली बहुत प्रेशर था एग्जाम का बात, तो ऐसे रिलैक्स करने आई थी।
1: तो कौन सी क्लास में आप?
2: हम 12th एग्जाम अभी दे ही है।
1: अच्छा, और एग्जाम का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है?
2: 15 मे बी 20 मई तक आ जाएगा।
1: ओके, तो कैसा लग रहा है, दिल में धक-धक हो रहा है?
2: हाँ, बहुत हो रहा है।
1: दुआ करूंगी कि आपका अच्छा रिजल्ट आए।
2: थैंक यू सो मच।
1: एक्चुअली हम एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं और ये स्पेशल है मदर्स डे के ऊपर। तो आप अपनी लाइफ में अपनी माँ को किस तरह से देखती हैं, वो आपके लिए कितनी स्पेशल है?
2: मेरा मम्मी बहुत स्पेशल है, लाइक देयर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस व्हाट आई फील फॉर माय मॉम, बिकॉज़ मेरा डैड नहीं है, मेरा सिंगल पेरेंट है। लाइक शी इज प्रोटेक्टिंग मी लाइक अ गार्डियन एंजल, वो लाइक गॉड का अनदर फेस बोल से मेरे मॉम को ही हम बोलेगी। लाइक थ्रू लॉट्स ऑफ पेन, बहुत डिस्ग्रेस भी हुआ है, बहुत कुछ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुआ है, लेकिन वन सपोर्टिंग पर्सन बोल से मेरे मम्मी है। वो आके मेरा बैकबोन है, लाइक शी इज माई बैकबोन इन एवरीथिंग, शी इज सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग, लिटरली कुछ भी यू कैन गो एंड डू इट, आई विल बी विद यू लाइक दैट।
1: ओके, बहुत अच्छा लगा जान के आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू और टुवर्ड्स योर मदर इज वेरी गुड। बहुत अच्छा फील हुआ ये सुन के। अगर आपको अपनी माँ के लिए एक शब्द में कुछ बोलना हो तो आप क्या कहेंगे उनके लिए?
2: Love you and take care of yourself. पापा हम लोग के साथ हमेशा है, हम आपके साथ देगी, लाइक हमेशा प्राउड फील करने का ट्राई करेगी हमेशा।
1: Be relaxed.
2: Okay.
1: कोई सॉन्ग अगर आप अपनी माँ को डेडिकेट करेंगी, मम्मी को डेडिकेट करोगी तो वो कौन सा होगा?
2: एक गाना है तुझ में रब दिखता है।
1: Yeah, जी जी।
2: It's for those lines are only for my mom. Okay. मेरे मम्मी के लिए हम डेडिकेट करेंगे।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना है। One more question मेरी कि अगर आज के दिन जो मदर्स डे भी है तो किस तरह से सेलिब्रेट करने का सोचा है आप?
2: For me, I don't have any idea because हम मेरे मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करिए, लाइक हर दिन मम्मी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि मेरा सिंगल पेरेंट है करके हम मेरे मॉम के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा हम ट्राई करेंगे कि उनके साथ जो भी टाइम है क्वालिटी टाइम में हम स्पेंड करेंगे। और मे बी आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल जो मेरा तरह भी है और नहीं है, मेरे से भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत सारे जन है, उन लोगों को हेल्प करना है, लाइक इन दिस डे आई वांट टू हेल्प।
1: और आपसे बात करके मेरी हमें बहुत अच्छा लगा।
2: थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी।

0: हेलो, एक्सक्यूज मी
1: जी,
0: मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ?
1: जी हाँ।
0: एक्चुअली ये एक जनता जंक्शन प्रोग्राम है और इसमें आज हम मदर्स डे पर एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए।
1: जी, मेरा नाम कियारा है।
0: कियारा, क्या करती हूँ?
1: मैं फिलहाल के लिए स्टूडेंट हूँ और क्लास 11th में पढ़ती हूँ।
0: अच्छी बात है। तो पढ़ाई कितनी अच्छी लगती है आपको?
1: जी, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है और उससे मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नॉलेज बढ़ता है, आईक्यू बढ़ता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
0: तो कियारा, आपकी लाइफ में आपकी माँ कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्या मायने रखती है?
1: जी, माय मदर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज शी ऑलवेज सपोर्ट मी, इवन इफ आई एम फेलिंग ऑलवेज, शी ऑलवेज सपोर्ट मी अ लॉट, एंड इवन इफ आई फील लो शी ऑलवेज सपोर्ट मी एंड एनकरेज मी फॉर वट आर आई एम डूइंग, एंड आई रियली लव दैट बिहेवियर ऑफ हर्स, एंड या शी ऑलवेज केयर फॉर मी, आई लव हर।
0: चलिए, बहुत अच्छी, बहुत सारी बात बताई आपने अपनी माँ के बारे में। तो कियारा, अगर कभी 11th पढ़ने के बाद आप कुछ बन जाएं तो अपनी माँ के लिए क्या करना चाहेंगी?
1: या मैं उसे फिनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करना चाहूँगी। वो कभी और कभी बाहर घूमने नहीं गई है, लाइक फॉरेन कंट्रीज एंड ऑल, एंड शी इज़ रियली विलिंग टू गो, एंड अगर मैं इतना फिनेंशियली स्टेबल हुई तो मैं श्योर उनको लेके जाना पसंद करूँगी। लाइक पहले उनको लेके जाऊँगी, घुमाऊँगी, फिर मैं अकेले सोलो ट्रैवल करना पसंद करूँगी।
0: ओह, बहुत अच्छा प्लान है आपको, बहुत अच्छा लगा जान के। अच्छा, तो वैसे आपको पता है कि मदर्स डे कब है?
1: जी, 10th मई में है।
0: ये 10th मई में क्यों पड़ा इस साल आपको मालूम है? मैं बता देती हूँ और इसके साथ में हमारे सभी श्रोताओं को भी इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। मदर्स डे हमेशा मई महीने के दूसरे रविवार यानी सेकेंड संडे को ही मनाया जाता है, तो इस बार ये 10th मई को पड़ा। कियारा, इसके बारे में जानती थी आप?
1: नहीं, मैं नहीं जानती थी। थैंक यू।
0: ओके, चलिए, अच्छी बात है। जैसे कि बचपन से उन्होंने आपको बड़ा किया है, कुछ ऐसी बात जो हमसे शेयर करना चाहती हो जो मज़ेदार हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट जो हुआ हो और जो ही बहुत फ़नी हो।
1: मैं जब छोटी थी, मैं जब खेल कर आती थी, मैं गिर जाती थी चोट वोट के साथ, मुझे सबसे पहले मम्मी डांटती थी। भाई, मुझे पहले पैम्परिंग नहीं मिलती थी, पहले तो डांट लगता था, उसके बाद जाके पैम्परिंग होती थी मेरी,
0: और जो कि हर मम्मी करती है
1: जी।
0: ओके, चलिए, अच्छे लगा ये चीज़। और आज के स्पेशल दिन में मम्मी के लिए कुछ सोचा है, क्या करेंगे आप? ऐसा कुछ सरप्राइज़ देना है या कुछ करना है उनके लिए?

0: कुछ करती हो?
1: जी, मैं हमेशा उनके लिए कार्ड बनाती हूँ। फिलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें इस साल मैं बुके भी दूँ।
0: अच्छा, तो कार्ड अपने हाथों से बनाती हैं?
1: जी।
0: तो आप आर्ट्स में भी शौक रखती हैं?
1: जी।
0: ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर। और तो कियारा, क्योंकि ये सॉन्ग बेस्ड प्रोग्राम है, तो ऐसा कोई गीत जो आपकी मम्मा के लिए आप डेडिकेट करेंगे?
1: जी, नज़र लाए ना, मेरी मम्मा का एक फेवरेट सॉन्ग है जो वो हमेशा सुनती है जब भी उनका मन करता है। फिल्म तो मुझे याद नहीं है, बट ये सॉन्ग वो सुनती है।
0: ओके, चलिए, नज़र लाए ना बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, तो मैं ये आपके लिए प्ले कर दूँगी। और कियारा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें आपने बोली अपनी मम्मा के लिए, आपको अच्छा लगा?
1: जी।
0: तो ज़रूर सुनेगा हमारा प्रोग्राम और आपका ये मनपसंद गीत अपने मम्मा के साथ सुनेंगे आप?
1: जी, ज़रूर।
0: ओके, चलिए, बाय
1: बाय।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: हेलो मैम।
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम के कविता है
0: जी। कविता जी कहाँ रहती हैं आप?
1: गेरा चरमा में रहती हूँ।
0: क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ।
0: हमारा ये प्रोग्राम है एक जनता जंक्शन, ये समर्पित है मदर्स डे पर, क्योंकि 10 तारीख को जो है मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस विषय पर आप कुछ हमारे श्रोताओं से कहना चाहेंगी?
1: सारा बच्चा अपने को मम्मी को अच्छे से देखे,

0: सही सलामत रहे, वही मैं बोलना चाहती हूँ।
1: गीत संगीत का शौक रखती है, गाने सुनती है?
0: पुराना गाने पहले सुनती थी, अभी उतना नहीं सुनती।
1: तो आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए कौन सा वो गाना प्ले कर दे, आपकी पसंद का कोई गाना हो तो बताइएगा।
0: वो मोहरा पिक्चर है ना, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो वाला था। पहले अच्छा गाना है, इसीलिए वो पूरा पसंद है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए,
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जनता जंक्शन का आज का ये खास मदर्स डे स्पेशल कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, यहाँ परिवारों और बच्चों की रौनक माहौल को और भी खूबसूरत बना रही है। हमारे साथ इस वक्त खड़ी हैं एक स्टूडेंट। आपका नाम क्या है बेटा?
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम अनुष्का है।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम जनता जंक्शन में। सबसे पहले आपको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आपको भी मैम और सभी माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
0: अच्छा अनुष्का, माँ आपके लिए क्या मायने रखती हैं?
1: मेरे लिए माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी मैं परेशान होती हूँ, माँ हमेशा मुझे समझाती है और हिम्मत देती है।
0: सच कहा आपने। कोई ऐसी बात जो आपको अपनी माँ की सबसे खास लगती हो?
1: जी मैम, मेरी माँ चाहे कितना भी व्यस्त हो लेकिन मेरे लिए समय ज़रूर निकालती है। उनकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है।
0: बहुत ही सुंदर जवाब। आप अपनी माँ के लिए कोई गीत समर्पित करना चाहती हैं तो कौन सा गीत चुनेंगी आप?
1: मैम, मैं अपनी माँ के लिए फिल्म तारे ज़मीन पर का गीत माँ समर्पित करना चाहती हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत पसंद है आपकी, यकीनन हर माँ के दिल को छू जाएगा ये गीत। अगर आपकी माँ अभी ये कार्यक्रम सुन रही हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी?
1: मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस समय दो दोस्त यहाँ पे जो है शाम की सैर कर रहे हैं, तो आइए उनसे बातें करते हैं। जी, आपका नाम?
1: दीक्षा।
0: और आपका नाम?
1: मेलिना।
0: जी, शाम का समय आप यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं?
1: कभी कभी।
0: तो कैसा लगता है यहाँ पर आपको घूमकर?
1: बहुत अच्छा लगता है, इधर ग्रीनरी है यहाँ पे।
0: जी, ऐसे क्या करती हैं आप?
1: फर्स्ट ईयर BA LLB।
0: अच्छा, और आप?
1: फर्स्ट ईयर BA पॉलिटिकल।
0: जैसा कि हमारा एक प्रोग्राम है जनता जंक्शन, तो उसमें हम जो है मदर्स डे के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आपकी माँ का क्या महत्व है, कुछ हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे आप?
1: मेरी माँ बहुत लाइक शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी, लाइक शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, लाइक आई एम लिविंग फार फ्रॉम हर, सो नाउ आई हैव कम इन वेकेशन, सो आई मिस हर अ लॉट।
0: बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हैं अपनी माँ को याद करते हुए। जी,
2: समझ सकते हैं जो बच्चे दूर रहते हैं और अपनी माँ से इतना दूर से कनेक्ट होना और फिर वेकेशन में उनसे मिलना, तो एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जिस तरह से आपका एक्सप्रेशन है, तो समझ सकते हैं कि आप इतनी माँ को हर दिन कितना मिस करती हो।

0: और आपके जीवन में आपकी माँ का क्या महत्व?
1: जी लाइक बोलते हैं ना कि मम्मी ही सबसे पहली फ्रेंड होती है, तो लाइक शी इज फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड टू मी।
0: और अगर मम्मी को आप एक वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह से करेंगे?
1: शी इज आवर वर्ल्ड
0: या
1: लाइक सब कुछ।
0: चलिए, आज की जनरेशन अपनी माँ को इतना अच्छा स्थान देते हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो मदर्स डे में किस तरह से सेलिब्रेट करने का सोचा है आपने मम्मी के साथ? क्या स्पेशल उनके लिए करेंगी?
1: घूमने मम्मी का साथ बाहर टाइम स्पेंड करेंगे। संडे है ना,
0: जी
1: घर पे रहेंगे सब।
0: ओके, गर्मी बहुत है
1: जी तो घर
0: ओके
1: पे।
0: कुछ सरप्राइज देने का सोचा है आपने?
1: सोचे तो है बट
0: चलिए,
1: अभी सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना
0: अच्छा है, कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए। ठीक है, अपने मम्मी के साथ अच्छे से मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए, उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए।
2: और चलते चलते आपकी पसंद का कोई गाना जो आपकी मम्मी के लिए आप डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: तू कितनी अच्छी।
2: जी, ये गीत आपकी पसंद का हम जरूर प्ले करेंगे। आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

आज का जनता जंक्शन कार्यक्रम समर्पित था मदर्स डे पर। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि मदर्स डे स्पेशल का ये सफर आप सभी के दिल को छू गया होगा और माँ से जुड़ी प्यारी यादों को फिर से ताज़ा कर गया होगा। अब हम यही कहना चाहेंगे, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है। अपनी माँ को समय दीजिए, प्यार दीजिए और हमेशा उनका सम्मान कीजिए। इसी संदेश और वादे के साथ किसी और जंक्शन में होगी आप सभी से हमारी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए आपसे चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कुछ खूबसूरत गजल। कार्यक्रम की पहली गजल आप सुनने जा रहे हैं, इसके बोल लिखे हैं रहमत खान ने और आवाज है सलमा आगा की।

0: श्रोताओं, आज की गज़लों की इस पेशकश को अब यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహెర్ట్స్ పై ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం.

0: ശ്രുതി മധുരം സമാപിക്കുന്നു.
1: ശ്രുതി മധുരം.

अभी आपने सुना मलयालम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में

106.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब सुनिए महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार प्यारी बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने इस कार्यक्रम में जो है घर संसार, जिसे लेकर आपकी सखी आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर है कुछ बातें लेकर, कुछ तराने लेकर। तो चलिए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से सुविचार के साथ, जो कुछ इस तरह है कि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। और बहनों, ये एक सत्य है, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी आशा ही होती है जो हमें आगे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। कभी कभी जीवन में अंधकार छा जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत निराश हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खुला, और तब एक छोटी सी दिए की रोशनी, एक उम्मीद की रोशनी, एक आशा की रोशनी हमें जीवन की ओर लेके जाती है और हमें बताती है कि हाँ, उम्मीद अभी बाकी है, जीवन अभी बाकी है। इसलिए कभी निराश ना हो, हमेशा अंधकार में उस रोशनी को ढूंढें जो रोशनी आपको उस पार ले जाएगी जहाँ उम्मीद है, जहाँ आशा है, जहाँ आपकी जीत है। तो चलिए इसी बात पे एक प्यारा सा तराना सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस दिन को मनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि हर उस माँ को सलाम किया जाए, हर उस माँ को आदर दिया जाए जो अपने जीवन को त्याग कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है, उन्हें प्रेम करती है, उन्हें जीवन में मुश्किलों का सामना करना सिखाती है। बहनों, माँ शब्द सिर्फ एक ही अक्षर का है लेकिन उसके अंदर पूरी दुनिया समाई है। तो चलिए इस मातृ दिवस पर हर उस माँ को सलाम करें, हर उस माँ को नमन करें जो माँ अपने बच्चे के लिए सर्वस्व अपना त्याग देती है। और माँ सिर्फ वो नहीं होती जो पैदा करती है, माँ वो भी होती है जो पालन पोषण करती है। तो चलिए आप सभी बहनों को, माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। बहनों, आइए अब इस प्रकृति की बात करते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देती है, खाना, छाव, औषधियाँ और कई चीज़ें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, 98% पौधों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, लेकिन हर साल कीटों और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और पोषण पूरा नहीं हो पाता। और इसी परेशानी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाने का निर्णय लिया। इस दिन पौधों के स्वास्थ्य

की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है और साथ ही जैव विविधता की रक्षा कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। अब जैसे कुछ छोटी छोटी बातों का हम खुद ही ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि जैविक कीटनाशक का उपयोग, जिनमें है नीम का तेल, लहसुन या साबुन का पानी का स्प्रे, जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है और पर्यावरण को नुकसान किए बिना कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा

सफाई से, कीट पनपने से बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा मौसम से सुरक्षा, पानी का प्रबंधन और मल्चिंग भी बहुत ज़रूरी है। बाड़ लगाने से पौधों को जानवरों से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा पौधों को पोषण, उनकी देखभाल, उनका फसल चक्रण भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहनों, जैविक खाद से उनमें मजबूती आती है और रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ती है। जितना हो सके जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और कॉम्पोस्ट अपने घर में ही बना लें। इस तरह से आपकी रसोई के कचरे का प्रबंधन भी होगा और पौधों को पोषण भी मिलेगा। तो चलिए बहनों, अपनी ओर से कुछ कदम उठाएं और पौधों की सुरक्षा में अपना योगदान दें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है, उन्हें प्रेम करती है, उन्हें जीवन में मुश्किलों का सामना करना सिखाती है। बहनों, माँ शब्द सिर्फ एक ही अक्षर का है लेकिन उसके अंदर पूरी दुनिया समाई है। तो चलिए इस मातृ दिवस पर हर उस माँ को सलाम करें, हर उस माँ को नमन करें जो माँ अपने बच्चे के लिए सर्वस्व अपना त्याग देती है। और माँ सिर्फ वो नहीं होती जो पैदा करती है, माँ वो भी होती है जो पालन पोषण करती है। तो चलिए आप सभी बहनों को, माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। बहनों, आइए अब इस प्रकृति की बात करते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देती है, खाना, छाँव, औषधियाँ और कई चीज़ें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, 98% पौधों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, लेकिन हर साल कीटों और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और पोषण पूरा नहीं हो पाता। और इसी परेशानी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाने का निर्णय लिया। इस दिन पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है और साथ ही जैव विविधता की रक्षा कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। अब जैसे कुछ छोटी छोटी बातों का हम खुद ही ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि जैविक कीटनाशक का उपयोग, जिनमें है नीम का तेल, लहसुन या साबुन का पानी का स्प्रे, जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है और पर्यावरण को नुकसान किए बिना कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा मुख्य फसल के पास गेंदे के फूल या तुलसी जैसे पौधे लगाने से भी कीड़े दूर रहते हैं। पौधों की पत्तियों और तनों की नियमित जांच और सफाई से कीट पनपने से बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा मौसम से सुरक्षा, पानी का प्रबंधन और मल्चिंग भी बहुत ज़रूरी है। बाड़ लगाने से पौधों को जानवरों से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा पौधों को पोषण, उनकी देखभाल, उनका फसल चक्रण भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहनों, जैविक खाद से उनमें मजबूती आती है और रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता बढ़ती है। जितना हो सके जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और कॉम्पोस्ट अपने घर में ही बना लें। इस तरह से आपकी रसोई के कचरे का प्रबंधन भी होगा और पौधों को पोषण भी मिलेगा। तो चलिए बहनों, अपनी ओर से कुछ कदम उठाएं और पौधों की सुरक्षा में अपना योगदान दें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: बहनों चलिए अब थोड़ा सा हम अपनी सेहत की ओर मुड़ते हैं और आज आपको हृदय रोग और योग इन दोनों का क्या तालमेल है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं और इस विषय पर आपको एक वार्ता सुनवाते हैं जो हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी आर नर्मदा। तो आइए मिलके उनकी वार्ता को सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह से योग के माध्यम से हम हृदय रोग का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: नमस्कार, आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए, योग के क्या क्या लाभ हैं और हृदय रोग की रोकथाम योग द्वारा किस तरह की जा सकती है। योग यह शब्द सुनते ही हमारे मन में ध्यान, शांति और साधना की छवि उभरती है, लेकिन योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है या मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन है। संस्कृत में योग का अर्थ है जोड़ना। यह जोड़ता है शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से। यह शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाता है और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान और कई अन्य अभ्यास शामिल हैं जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात योगा कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। योग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जीवन में संतुलन बनाए रखें या केवल आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें रोगों से दूर, मन से स्थिर और आत्मा से जागरूक बनाती है। योग भारत की महान देन है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। जब हम प्रतिदिन योग करते हैं तो हम जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, संतुलन और शांति की ओर ले जाते हैं। आइए जानते हैं योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं। योग करने से पाचन, रक्त संचार और सांस लेने की क्रिया बेहतर होती है। प्राणायाम जैसे योग अभ्यास से फेफड़े मजबूत

होते हैं और सांस लेने में सुधार होता है। बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, तनाव, चिंता और गुस्सा कम होता है, नींद अच्छी आती है। योग करने से दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। योग से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारे ब्रेन और शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है, हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। जिनको एसिडिटी या पेट खराब रहता है, हमेशा कब्ज जैसी परेशानी होती है, तो योग करने से ये सब परेशानियाँ आपको नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म की परेशानी, डाइजेशन की परेशानी होती है, तो वो सब भी ठीक होती है योग करने से। और जो हमारा स्ट्रेस होता है, थकाव, तनाव, इसे हमें रिलीफ मिलता है अगर हम योगा डेली करें। योगा डेली मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्ट्रेस हमें डेली होता है, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो हमारा स्ट्रेस को बैलेंस करे और हमारी बॉडी को एकदम तरोताज़ा कर दे। तो योगा करने से हम तनाव मुक्त रहते हैं। योगा करने से बार बार खाना खाने की जो चाह होती है उसमें भी नियंत्रण होता है। योगा हमारे हार्मोन्स को स्टेबल करता है। वो कैसे करता है? अब योगा में रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और एनर्जी स्रोतों को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा हार्मोन स्टेबल हो जाते हैं। जितने भी टेस्ट बर्ड होते हैं वो सब संतुलित हो जाते हैं। उससे हमारी जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं अनचाहा खाने की, वो सब खत्म हो जाती है। योगा वज़न कम करने में ज़्यादा योगदान देता है। योग हमारे लिए बहुत लाभकारी है। घरेलू कहीं चिंताएं होती है घर में बैठे बैठे, या फिर कहीं बार घरेलू आप ऐसे काम करते हैं जिससे आपके कंधे जल्दी से झकड़ने लगते हैं, थक जाते हैं, कंधों में दर्द रहता है, चिंता रहती है, तनाव रहता है। चाहे आप कितना भी काम करें परंतु आप अपना चिंता तनाव को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और आप घर में जितना भी काम करते हैं उसमें आप पूरा का पूरा समय सिर्फ अपने एक हिस्से को लगाते हैं। यदि आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो आप दाएं हाथ को ज़्यादा प्रयोग करते हैं और बाएं हाथ को बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में आपका जो दायां हिस्सा है वो कमज़ोर होने लगता है और आपको समस्या होने लगती है। जो लोग योग करते हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग जब भी योग करते हैं दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को बराबर मात्रा में हम लोग प्रमुख मानते हैं, दोनों हिस्सों को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे शरीर की पूर्ण शारीरिक क्षमता बढ़ती है। जो लोग ऑफिसों में जाकर कामकाज करते हैं, आपको कहीं कहीं तरह की मानसिक चिंताएं होती हैं, कहीं तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको चिंता, तनाव, अनिद्रा जैसे समस्या आने लगती हैं, डिप्रेशन होने लगता है, जिससे चिड़चिड़ापन आने लगता है। यदि आपको इस तरह की समस्या होती है, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक, बड़े समय तक कुर्सी में बैठने से पेट निकल आया है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होने लगता हो, तो इन सभी समस्याओं को आप योग से ठीक कर सकते हो। जितनी भी समस्याओं की बात अभी हमने करी, वह सब कहीं ना कहीं हमें हृदय रोग की ओर ले जाती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज के समय में हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज एक गंभीर समस्या बन गई है। इसका मुख्य कारण है तनाव, अनुचित खानपान, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों की कमी। आज के समय में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि योग के माध्यम से हम ना केवल हृदय

0: हम
1: गुड
0: आकाशवाणी के श्री
1: आफ्टरनून,
0: विजयपुरम।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग। See Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
3: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
3: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: यह शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाट अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு

0: मोड़ी गिरेन।
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। 1 सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय

0: ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेन देन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और यह रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत लहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। आतिफ असलम की आवाज़ है जिसकी गीत रचना की है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया प्रीतम ने।

विशाल खुराना के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए अब सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा गीत, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, और फिल्म का नाम है निर्जा।

अप्रस्तुत है के की आवाज़ में इरशाद कामिल का लिखा एवं अनुपम अनुमोद का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म यारिया का ये गीत।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कार्यक्रम गीत लहरी को जारी रखते हुए अब आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का एक गीत। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं खूबसूरत फिल्म का एक गाना, प्रिया पांचाल के स्वर में। गीत रचना अमिताभ वर्मा की व संगीत दिया स्नेहा खानवलकर ने।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है एल्बम गीतों का कार्यक्रम एल्बम टाइम। कभी तो नजर मिलाओ एल्बम से आशा भोसले और अदनान सामी की आवाजों में सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

0: मेयार तक नहीं पहुंचा, फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना,
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर्द से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम एल्बम टाइम से अब अगला ट्रैक एल्बम साजन मेरे सतरंगिया से सुनिए। आवाजें हैं दलेर मेहंदी और राजन राज की।

जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम एल्बम टाइम से लेना चाहेंगे इजाजत।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम। 3:30 हुए हैं। पेश है बोलते नगमों का कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

सभी सुनने वालों को जय शीला का नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज गीतों की ये महफिल समर्पित है उस रिश्ते को जो दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ और सबसे अनमोल रिश्ता है,

तो आइए अपनी माँ को दिल से याद कीजिए, उनकी दुआओं को महसूस कीजिए और डूब जाइए इस भावनाओं से भरी सुरमई शाम में। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल ममता की उस मीठी छांव में खो जाता है जहां सिर्फ प्यार होता है, अपनापन होता है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वो हमारी पहली दुनिया होती है, पहली पूजा होती है और जीवन का पहला आशीर्वाद भी। उसकी ममता गंगा की धारा की तरह पवित्र होती है, उसकी दुआएं भगवान के आशीर्वाद जैसी होती है और उसका आंचल हर दुख को सुकून में बदल देने की ताकत रखता है।

लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, और वो है माँ, जिसके बिना जीवन कितना भी बड़ा क्यों ना हो अधूरा ही लगता है। दोस्तों, जिसके सिर पर माँ का हाथ होता है वो सचमुच दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है।

0: वो चेहरा जिसे देखते ही हर दर्द कम हो जाता है, और वो आंचल जिसमें हर इंसान खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। माँ अपने बच्चों के लिए रात रात भर जागती है, उनकी मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढती है और उनके हर दुख को खुद पर ले लेना चाहती है। दोस्तों, सच ही कहा गया है, ये दुनिया चाहे कांटों से भरी क्यों ना हो, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा एक खूबसूरत फुलवारी बनकर रहती है।
1: तो कितने

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे है। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए सभा की शुरुआत करते हैं निकोबारी कार्यक्रम के साथ।
1: सिन्ला मिन्ये रोकर हमांग इंगिरेता का लंबक तेलगम मीडियम वेव तो 438.6 मीटर हे 684 किलोहर्ट्स रमांग एलगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम मनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिन कहतलोन इंगिला हराप तरन मिने महावट करेचोग नलक एलहोय मिने कुन पनाम ही। एम वी रानी लक्ष्मी किरण ग्रंडचू मायबंदा तडिकलीपुर इप्त लुसियन अलांगो चिंगे इधसर कंड्रो दलापुह नलक्ञ फिनिक्स पे गाछावान नईप

0: kujuga lang yung tayo talunso ay hangmine tahalil lang at ayat tinkaka hoya nga tal nga ang insin nga tanga mo hik inhurit ay hangrong itaka saata idefend kan rota laharap nga yin.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की पांचवी कड़ी।

अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप इस बुरी आदत से निजात पाना चाहते हैं तो अपनाइए ये टिप्स जो आपको मैं आज लम्हे प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। तो सुनते रहिए आरजे चेतन के साथ आज का लम्हे प्रोग्राम। क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें अपने आप को कंट्रोल करने और सकारात्मक तरीके से समस्या का सामना करने में मदद करता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम स्थितियों या व्यक्तियों के प्रति हमारे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के उपायों को सीखते हैं। यह हमारे दिमागी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को सुखद बनाते हैं। क्रोध को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए ध्यान, स्थिरता और तंत्र मंत्र तकनीकों को अपनाने में मदद कर सकती है। गुस्सा आना सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्यादा गुस्सा आने से आपकी मानसिक

स्थिति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और शरीर में नई बीमारी भी पैदा होती है, जैसे चिंता, अवसाद, सिरदर्द, नकारात्मकता और बीपी की समस्या आदि। यदि आप इस आदत से तंग आ चुके हैं और इसे निजात पाने के लिए कुछ आसान टिप्स देने जा रहा हूं मैं आपका आरजे चेतन इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, सबसे पहले गहरी सांस ले। जिस भी पल आपको गुस्सा आए अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस ले। इससे आपको अपने गुस्से से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। मेडिटेशन में भी ये दोनों प्रक्रिया शामिल है। गहरी सांस आपको तनाव से मुक्त करने में मददगार साबित हो सकती है और इससे आपका मन भी शांत रहेगा। अपना मनपसंद गाना सुने। अच्छा संगीत आपके गुस्से और मन दोनों को शांत करता है। म्यूजिक थेरेपी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकता है। अच्छा संगीत सुनने से आपका ध्यान भी उस बात से हट जाएगा जिससे आपका गुस्सा और कम हो जाएगा। किसी भरोसेमंद यानी ट्रस्टवर्थी फ्रेंड से बात करें। इसी तरह अगर आपका कोई भरोसेमंद दोस्त है तो आप हमेशा अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में किसी को बताएं या फिर बात करना हमेशा आपके गुस्से को बाहर निकालने का एक सहायक तरीका है। अगर ऐसा कोई दोस्त नहीं है तो आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जब आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भर जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो संभव है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप शब्दों में सुकून ढूंढ सकते हैं। रिलैक्स, टेक इट इजी और यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी ओके जैसे शब्द या व्याख्यान सभी अच्छे उदाहरण हैं। यदि आपकी किसी से अभी अभी व्यक्तिगत रूप से या किसी कॉल पर झगड़ा हुआ है तो ये जरूरी है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें। एक शांत कमरे में सोए और लोगों के आसपास रहने से कुछ समय के लिए बचें। इससे आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने का समय भी मिलेगा। पैदल चलने से आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल आपके सभी मांसपेशियों को आराम देता है बल्कि आपको शांत करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपको प्रक्रिया के बारे में सोचने के अधिक समय भी देता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज्यादा बात किए वहां से उठना है और थोड़ा टहल कर आना चाहिए। क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट एक उपचार नहीं है बल्कि एक चिकित्सा है जिसे आप अपने परामर्शदाता के साथ अपने मुद्दे पर रखते हैं और आप उन्हें कैसे सुधारेंगे इस पर निर्भर करता है। इसमें आपके चिकित्सक के साथ खुली बातचीत की एक श्रृंखला शामिल होती है। नई प्रणाली का पता लगाते हैं जहां आप अपनी निराशा को बाहर निकाल सकते हैं या उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। इसमें मूल रूप से कई स्तर शामिल है और आपकी चिकित्सीय स्थिति के आधार पर चिकित्सक आपके द्वारा होने वाले स्रोत की संख्या का सुझाव देंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

क्रोध को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे एक अभिव्यंजक और स्वीकार्य तरीके से बाहर जाने देना चाहिए। उपचार के सामान्य लक्षण में से एक यह शामिल होगा कि आप चीजों को कैसे हल्के से लेते हैं। आपको एक अलग दृष्टिकोण से स्थिति को देखना सिखाया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर चीज को मजाकिया अंदाज में लेने के लिए तैयार हो सकते हैं।

हैं और उस पर हंस सकते हैं। क्रोध प्रबंधन आपको अपनी पहचान करने और उन चीजों को स्वीकार करने में मदद करता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ दुर्लभ मामले में दवाइयों और दवाइयों को शांत प्रभाव में शामिल किया जा सकता है। यदि आप अवसाद से पीड़ित हैं, तो अवसाद निरोधक गोलियां निर्धारित की जा सकती है। एक चिकित्सक का चयन करते समय सुनिश्चित करें कि आप कई वर्षों के अनुभव वाले एक को चुनते हैं और जो आपके मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त सक्षम है। सबसे बड़ी गाइडलाइन ये होगी कि अगर स्थिति इसकी मांग करती है तो आपकी जीवन शैली और आपके परिवार को भी बदलना होगा। गुस्सा बिल्कुल एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक भावना है जिस पर आप नियंत्रण खो सकते हैं और आपके शरीर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपको एक ताजा और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है जहां तनाव आपको प्रभावित नहीं करता है। यदि आपके कार्य की प्रकृति आपकी स्थिति का मूल कारण है तो आपको काम में बदलाव देखने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंगर मैनेजमेंट के बारे में। हम मानते हैं कि यह बहुत छोटी समस्या है, पर यह छोटी छोटी समस्याएं आगे बढ़कर बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको जड़ से उखाड़ दीजिए और एक हैप्पी फैमिली और एक हैप्पी लाइफ लीड कीजिए। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 4:40 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनते हैं आज व कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं महिलाओं की फरमाइश पर व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संगीत संगनी। त्रिपुरा के लोकगीत आप सुन सकते हैं 6:30 पर कार्यक्रम धरती के गीत में। 6:45 पर देशगान। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से अवगत कराया जाएगा शाम 7:15 पर। संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 7:30। रात 8 बजे आप आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान श्री टी श्रीनिवास का वीणा वादन आप सुन सकते हैं, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर आप FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत भी सुन सकते हैं, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। रात 11 बजे मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

अब सुनते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। 5:55 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एग्री टिप्स, जिसमें कल जानकारी का विषय रहेगा आम की जाला कीट। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा वादा शीर्षक पर। रामचरित मानस गान की 235वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। 6:40 पर समाचार वार्ता। 6:45 पर वतन के गीत, मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देशरागिनी। इसी समय FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का भी आनंद ले सकते हैं। 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल 8:30 पर तलत अजीज, रूप कुमार राठौर और शारदा का गायन होगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा कल सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली खान का हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन पूरिया धनाशी प्रसारित होगा। 10:00 सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 128वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी कल दिन में 11:00। 11:30 पर सुनिए कुमार सानू के गाए गीत कार्यक्रम एक ही कलाकार में। 12:00 तेलुगु कार्यक्रम। 12:30 का समय रहेगा मलयालम कार्यक्रम का। 1:10 पर समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम ए माटी रे आप सुन सकते हैं। 1:30 का समय रहेगा व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे FM 100.9 MHz पर लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड के संग। 3:30 पर बोलते नगमों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें कल फनकार होंगे नसीम बानो चोपड़ा और अशोक खोसला। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुन सकते हैं 4:45 पर। शाम 5:00 आनंद लीजिए तमिल कार्यक्रम का और 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। संध्या 6:00 सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम। 6:30 पर रिमिक्स गीतों का कार्यक्रम होगा पॉप मसाला। 7:05 पर प्रादेशिक समाचार, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं आप सुन सकते हैं 7:15 पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, जिसमें कल कलाकार होंगे जसवंत सिंह। 7:30 पर आप सुन सकते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। रात 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम के जरिए आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का। 8:30 पर रोजगार समाचार और चंद देशभक्ति गीत पेश किए जाएंगे। ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी आप कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

इस समय आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में एबीसीडी फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं मयूर पुरी ने और संगीत सचिन जिगर का।

अब सुनते हैं समीर का लिखा एक गीत, जिसे संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। स्वर कुमार सानू और अलका याग्निक के हैं। इस गीत को हमने लिया है श्रीमान आशिक फिल्म से।

श्रोताओं, आप सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म है नागिन और लुटेरा।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி வழங்கும் தமிழ் அமுதம். வணக்கம் நேயர்களே.

श्रोताओं, अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं और श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम संगीत संगनी का।

संगीत संगनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी मंजीत की तरफ से नमस्कार और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सुनने वाली सभी माताओं को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का है और इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की फरमाइशों को। तो सखियों, आप अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश जरूर भेजें। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9474234000। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमने ली है वंडूर इंदिरा नगर से संचिता मिस्त्री की। इन्होंने माँ फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है।

अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सावन कुमार की आवाज़ों में श्री विजयपुरम कैटलगंज से रचना सिंह की फरमाइश पर ये गीत।

आप सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। कैंपबेल से निर्मल कौर की फरमाइश पर बाजीगर फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही सखियों, मैं आपके फरमाइशी गीतों के सिलसिले को विराम देती हूँ। अगले रविवार संध्या 6 बजे हम आपके संदेशों के जरिए आपके पसंद के गीत लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप संगीत संगनी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं त्रिपुरा के लोकगीत। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और सुनते हैं त्रिपुरा के लोकगीत।

Orang xa. Orang xa.

अभी आप धरती के गीत कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा के लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं चंद देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दूं, आज संध्या 7:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीत। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो म्यूजिक लवर्स 7:30 पर। रात 8 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

कल सुबह 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष, जो केंद्रित होगा वादा शीर्षक पर। 6:45 पर देशभक्ति गीत। 7:15 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देशरागनी।

कल सुबह 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का समय रहेगा कल सुबह 9:00। 10:00 सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। 11:30 पर कुमार सानू के गायक गीत आप सुन पाएंगे। कार्यक्रम एक ही कलाकार में।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। निकोबार जिले के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू किए गए हैं और मदर्स डे के अवसर पर अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत अहम है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। दैनिक वेतन शिफ्ट सप्ताह होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की

समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। टीवी के पांच ही प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है ग्रीष्मकालीन शिविर और शतरंज टूर्नामेंट। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। निकोबार जिले के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य छुट्टियों के दौरान शैक्षिक और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लिए एक सुरक्षित, अधिक समझदार, अनुशासित और मजबूत भविष्य का निर्माण करना है। इन ग्रीष्मकालीन शिविरों में बच्चों को रचनात्मकता और कला गतिविधियों, शैक्षिक और संवादात्मक सत्रों, खेलों और क्रीड़ाओं, सुरक्षा जागरूकता, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले अभ्यासों, अनुशासन और टीम भावना से जुड़ी गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और समग्र कौशल विकास का एक बेहतरीन मिश्रण प्रदान किया जाएगा। माता पिता और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने बच्चों का पंजीकरण कर इस पहल का समर्थन करें। यह पहल न केवल युवा मस्तिष्कों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है बल्कि समुदाय के भीतर पुलिस और जनता के बीच के संबंधों को भी मजबूत करती है। अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती में जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कार निकोबार में एक विशेष संवाद और मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का नेतृत्व निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर ने किया। इस अवसर पर कार निकोबार पुलिस थाना की थाना अधिकारी टी हेमावती और पुलिस रेडियो व फायर स्टेशन के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनजातीय समुदायों के इच्छुक उम्मीदवारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सत्र के दौरान पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर ने उम्मीदवारों को आगामी भर्ती अभियान के बारे में जानकारी दी। शारीरिक फिटनेस के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने उम्मीदवारों को नियमित प्रशिक्षण शुरू करने और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन और प्रेरक सुझाव भी साझा किए। आवेदन प्रक्रिया को सुचारू और बाधा मुक्त बनाने के लिए पुलिस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। यह पहल विभाग के समावेशी जनसंपर्क के प्रति समर्पण को दर्शाती है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा के अवसरों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। मदर्स डे के अवसर पर अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा मॉम एंड मी टीम शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन आज NCA शतरंज केंद्र डेयरी फार्म में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस विशेष टूर्नामेंट में माँ बच्चे की टीमों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और शतरंज के खेल के माध्यम से आपसी जुड़ाव, टीम वर्क और एकजुटता की भावना को उजागर किया। कड़े मुकाबले वाले कई दौरों के बाद ज्योति और ईशान की जोड़ी विजेता बनी और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। तृप्ति और हार्दिक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि निवेदिता और रुद्रानी ने तीसरा स्थान सुनिश्चित किया। सभी प्रतिभागी माताओं को उनके बच्चों की यात्रा में उनके निरंतर समर्थन, प्रोत्साहन और योगदान की पहचान के रूप में पदक भी प्रदान किए गए। टूर्नामेंट का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ जिसमें शतरंज के माध्यम से माताओं और बच्चों के बीच के विशेष बंधन का उत्साह मनाया गया। वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों की सहायता के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के उन छात्रों को निशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कोचिंग फीस देने में असमर्थ है। इस योजना में निम्न आय वर्ग के छात्रों, अनाथालय में रहने वाले बच्चों,

एकल अभिभावक परिवारों तथा अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूह के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण भी शुरू करने की योजना है। इच्छुक छात्र आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 जून तक फोरशोर रोड हैडो स्थित गैर सरकारी संगठन उन्नति के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक फोन संख्या 9434283062 पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। निकोबार जिले के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों में 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू किए गए हैं। और मदर्स डे के अवसर पर अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। सबसे पहले मौसम।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी।

अब सुनते हैं जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV रानीचंगा कल 11 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। इस जलियान की वापसी परसों 12 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। 13 तारीख को सवेरे 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए जलियान MV रानी लक्ष्मी श्री विजयपुरम से रवाना होगा। 14 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलियान डिगलीपुर से छूटेगा और उसी मार्ग से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड 15 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। अगले दिन 16 तारीख को सवेरे 7 बजे ये जलियान डिगलीपुर से छूटकर श्री विजयपुरम आएगा। 16 तारीख को संध्या 6:30 पर जलियान MV भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। अगले दिन 17 तारीख को दोपहर 2 बजे ये जलियान डिगलीपुर से छूटेगा और उसी बंदरगाह होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV कालीघाट मंगलवार 12 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। रात 9 बजे ये जलियान लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम वापसी करेगा। MV भारत सीमा 14 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए छूटेगा। उसी रात 8 बजे ये जलियान लिटिल अंडमान से छूटेगा और श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। जलियान सिंधु 15 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा। अगले दिन 16 तारीख को ये जलियान दिन में 10 बजे लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। इस जलियान की अगली यात्रा श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए 17 तारीख को सवेरे 8 बजे होगी। उसी रात 9 बजे ये जलियान लिटिल अंडमान से छूटेगा और श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। MV सेंटिनल 16 तारीख को शाम 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार जाएगा। अगले दिन 17 तारीख को शाम 4 बजे ये जलियान कार्निकोबार से छूटेगा और उसी बंदरगाह

हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। 21 तारीख को सवेरे 7 बजे MV कालीघाट श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए छूटेगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 22 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तरासा कचाल और ननकौरी होते हुए कैंपल बे के लिए MV कालीघाट 14 तारीख को सवेरे 7 बजे अपनी यात्रा आरंभ करेगा। 17 तारीख को 9 बजे यह जलयान कैंपल बे से छूटेगा और इन्हीं बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। यही जलयान 27 तारीख को सवेरे 7 बजे भी इन सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम से कैंपल बे जाएगा और 30 तारीख को रात 8:30 पर कैंपल बे से छूटकर सभी बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंपल बे के लिए जलयान सिंधु मंगलवार 12 तारीख को सवेरे 9 बजे अपनी यात्रा आरंभ करेगा। 14 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंपल बे से छूटेगा और ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापसी करेगा। यही जलयान 19 तारीख को भी सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ननकौरी और कचाल होते हुए कैंपल बे जाएगा। 21 तारीख को सवेरे 6 बजे ये जलयान कैंपल बे से छूटेगा और इन्हीं बंदरगाहों से होते हुए श्री विजयपुरम प्रस्थान करेगा। इस जलयान की अगली यात्रा श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैंपल बे के लिए 26 तारीख को सवेरे 9 बजे होगी। 28 तारीख को सवेरे 8 बजे ये जलयान कैंपल बे से छूटेगा और ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी यात्रा आरंभ करेगा। ये था जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। अब सुनते हैं जनसूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-0319-232-100, 0319-233-077 और 0319-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। ये थी जन सूचनाएं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं और अब समय है फिल्मी गीतों का।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली,

0: ये तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी, चुले का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।
2: इस गीत के साथ ही हमारा फिल्मी गीत समाप्त हुए।
1: तुझको ही माना मैंने अपना हनी, तू ही तो मेरी जान है।
0: हमको मैंने नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
3: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।
2: अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज रविवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स।

0: दोस्तों, हमारे आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58, और हमारा एसटीडी कोड है 03192। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं हमारा आज का पहला कॉल। हेलो म्यूजिक लवर्स, हेलो म्यूजिक लवर्स, हेलो हेलो। दोस्तों, शायद किसी कारणवश हमारे श्रोता का हमसे संपर्क टूट गया है। जब तक नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।
1: हेलो, पुर्तु मेरी में कुछ डालो ना।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: जी भगवान जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर, आप यहाँ हो?
0: जी
1: जी, आपकी कुछ आवाज़ कट कट के आ रही है सर।
0: जी शायद नेटवर्क का इशू होगा। जी
1: जी सर, मैं फिल्म का नाम बता देता हूँ। फिल्म का नाम है सलामी, और
0: जी
1: गाने के बोले जब हाले दिल तुमसे कहने को, और कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ सर।
0: जी जरूर।
1: हेलो, केसी सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, गोल्डी भाई हैं, और हमारे प्रेम सिंह सिसोदिया जी, गंगाधर जी, हेलो फरमाइश सेक्टर रेडियो श्रोता के सभी सदस्य, और पूनम जी कानपुर से, पूर्णिमा जी हैं विजयपुरम से।
0: जी भगवान जी, हम आपको आपका गीत जरूर सुनवाएंगे, पर
1: सर
0: आज
1: धन्यवाद
0: मदर्स डे है,
1: जी
0: और
1: सर।
0: आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: सर मैंने सुबह भी कॉल लगाया था आकाशवाणी विजयपुरम पे, उस पर बोला था, और अभी भी बोलता हूँ कि माता पिता का बहुत बड़ा स्थान होता है। सबसे पहले माता पिता ही रहते हैं इंसान के लिए, और सबसे बढ़कर माँ रहती है।
0: जी, ठीक है भगवान जी, इसी बात
1: और
0: पे।
1: सर मैं हर माँ, भारतवर्ष की हर माँ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मदर्स डे पर। जी
0: जी, ठीक है भगवान जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: दोस्तों, इस समय हमारे स्टूडियो में 7:42 और 12 सेकेंड हुए हैं। आप भी जल्दी फ़ोन उठाइए और हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। हेलो म्यूज़िक लवर्स,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। आपका नाम?
1: मेरा नाम पूरण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी पूरण जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बस सर बढ़िया हूँ और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, श्रोताओं की कॉल सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
0: जी जी जी तो सबसे पहले बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, आज मदद है तो उसी पर आज फिल्म का नाम है लाडला और गाने की बोल है माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ये गाना।
0: जी, तो मदर्स डे के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस मदद डे तो यही कहना चाहूँगा कि माँ को जैसे माँ का कहना मानना चाहिए और हर माँ की कदर करनी चाहिए, यही कहना चाहूँगा सर, और माँ है तो सब कुछ है सर।
0: ठीक है पूरण जी, अब हम सुनवाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हूँ, दुकान में बैठा हूँ, आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ और काम कर रहा था, मस्त हूँ।
1: जी, तो सबसे पहले आप बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है छोटा भाई।
1: जी,

0: नहीं। और कुछ मित्रों को याद कर लो
1: जी।
0: पूरन वर्मा जी है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णमा जी है, अविनाश जी है, पूनम जी है कानपुर से, राकेश जी है शिमला से, विमल असम से है, और अमर सहकारी गोल्डी जी है, और अमर सिंह है, भाई को मुंडा है, रमेश पात्रे है
1: जी। रमेश जी,
0: जी
1: हम आप
0: दिल्ली से।
1: जी हम आपको ये आपका ये गीत हम ज़रूर सुनाएंगे, पर आप बताइए हमें आपके एमपी के बारे में कुछ बताइए, जहाँ से आप हैं,
0: एमपी
1: सीहोर
0: में
1: के बारे में।
0: जी हमारे गांव से 8 किलोमीटर तलकनपुर नाम से एक गांव है, मतलब वहां पे देवी धाम है,
1: जी
0: विजयसन देवी की स्थापना है वहाँ, और नवदुर्गा में मतलब मेला लगता है वहाँ पे,
1: जी जी जी
0: तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और बहुत जोरदार ऊपर पहाड़ पे मंदिर बना हुआ है, बहुत बहुत सी जनता आती है, मतलब लाखों में श्रद्धालु आते हैं, सीढ़ी से भी है रास्ता और झूला से भी है, और
1: जी
0: पहाड़ से ऊपर जाते हैं,
1: जी
0: और हमारे नर्मदा जी हमारे किनारे पे है, नर्मदा जी नहाते हैं बढ़िया और ठंडक लेते हैं
1: जी जी जी जी
0: जी, होशंगाबाद हमारे पास है नर्मदापुरम।
1: अच्छा हाँ जी।
0: हाँ
1: तो चलिए रमेश जी, अब हम आपको सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो सर जी, नमस्कार
0: जी नमस्कार। आपका नाम?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी रमेश जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: हेलो म्यूजिक नंबर, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: जी राकेश जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है।
0: और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है
0: जी, तो गर्मी हो रही है?
1: जी, गर्मी हो रही है और मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडक भी आ रही है कि इन दिनों कम से कम 3-4 दिन तक लगातार बारिश हुई थी हमारे यहाँ।
0: जी, बारिश हुई थी, काफ़ी अच्छी बात है, आपको गर्मी
1: जी
0: से
1: जी
0: काफ़ी राहत मिली होगी। पर आपके वहाँ वैसे अमूमन ज़्यादा गर्मी पड़ती है शिमला में?
1: नहीं, शिमला में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ का तापमान बड़ा सामान्य होता है।
0: जी
1: जी जैसे कि अंडमान निकोबार का होता है, अंडमान निकोबार में तो चलो आपकी इधर सर्दी नहीं पड़ती होगी, तो हमारे सर्दी
0: जी
1: पड़ती है,
0: जी
1: बर्फबारी होती है। जी
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी,
1: जी जी
0: तो आज बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज मदद एक ऊपर एक गाना सुनना चाहता, राजा रंग का तू कितनी अच्छी है।
0: जी, और ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सबसे पहले ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा, फिर पूरण वर्मा, भगवान सिंह परमार, अविनाश तेली, पूर्णिमा, मोनिका जी और रमेश प्रजापति और तमाम सुनने वाले श्रोता, पूरण वर्मा के साथ और मांगीलाल चंदेल, भगवान सिंह परमार और धर्मवीर जी दिल्ली से।
0: ठीक है राकेश जी, चलिए अब हम सुनवाते हैं आपको आपका मनचाहा गीत।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और श्रोताओं अब समय है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ फिल्म के गीत से। आवाज़ मोहम्मद अजीज की है।

श्रोताओं, आप सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और एसपी शैलजा की आवाज़ों में संजोग फिल्म का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अब सुनते हैं आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी की लिखी रचना, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को हमने लिया है लावा फिल्म से।

अभी आप यादों की बारात फिल्म का गीत सुन रहे थे। अब सुनते हैं चाचा भतीजा फिल्म का गीत, आवाज शैलेंद्र सिंह की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन PR अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित में रेडियो ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 71, 36 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 24 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद है। रेडियो टेक्नीशियन ASI के लिए कुल पदों की संख्या है 12, 6 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 4 पद OBC वर्ग के लिए होगा तथा अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। सिपर ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 2, अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। ग्रुप सी में फिटर इलेक्ट्रीशियन HC केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। कुल पदों की संख्या 4 रखा गया है। अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 2-2 पद है। कांस्टेबल VHF ऑपरेटर पद के लिए 1 पद है जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। डीजल मैकेनिक केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद है 2। अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। फॉलोअर मैसेंजर के लिए पदों की संख्या है 16, अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पद, OBC वर्ग के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के

0: लिए एक पद है, पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट पीएमटी, अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी। सब इंस्पेक्टर पीएमटी पद के लिए कुल पदों की संख्या है 2, जो ओबीसी वर्ग के लिए हैं। ग्रुप सी डीलिंग असिस्टेंट एचसी और स्टोर कीपर एचसी के लिए एक एक पद रखा गया है, जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। असिस्टेंट मैकेनिक पीसी के लिए 2 पद हैं। अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए एक एक पद है। मैकेनिक हेल्पर पीसी पद के लिए 2 पद हैं, जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पदों की संख्या है 15, अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए 7-7 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। पुलिस मैरीन फोर्स पीएमएफ अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए कुल पद है 2, अनारक्षित और ओबीसी वर्गों के लिए एक एक पद है। ग्रुप सी पुलिस कांस्टेबल ग्रीजर के लिए कुल पद है 4, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2-2 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल लश्कर के लिए 7 पद कुल है, 3 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए एक एक पद रखा गया है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, ईएसएम, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन 17 मई 2026 को रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: अभी आप रोजगार समाचार सुन रहे थे। अब लीजिए सुनिए गौरव गान।

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र

0: पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: बहुत प्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू

0: हांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत

0: India to practice restraint, conserve resources, and uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: Hamare yahan kaha gaya hai ashtadasa puraneshu vyasasya vachanam dvayam परोपकाराह पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है।
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए-नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
0: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative healthcare with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education, and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboob Nagar. The highway forms part of the larger Hyderabad-Panaji Economic Corridor.

0: and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: The Prime Minister also highlighted the development of the Zahirabad industrial area as part of the national initiative to build industrial corridors, aiming to transform the region into a manufacturing powerhouse with world-class infrastructure and advanced ICT networks. Let's listen to what he said.
1: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: अभूतपूर्व निवेश कर रही मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें.
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne

0: Senior broadcaster RJ Simran looks back to some exciting times.
1: अच्छा रेनबो के पहले रेडियो का मतलब था सोबर फॉर्मल एंड देन बाय अर्ली 1993 केम एफएम रेनबो जैसे कि राज कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में रणबीर कपूर की कलरफुल एंट्री हो गई हो वी मेड अ ग्रैंड डेब्यू एज रेडियो जॉकीज बिकमिंग द क्रेजी पैशनेट पायनियर्स ऑफ दैट एरा We were not just hosting shows, we were inventing a language which India had never heard before. FM
0: is ready for you. AIR has been playing on for 9 decades now, changing its beat with the times. In 1969, Yuvavani was launched for the young and

0: शिक्षण प्राप्त किया। चार दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न, वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana, was born into a musical lineage. He began the art of Veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade Veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award, and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar-style plucking pushed the boundaries of Veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas ne apne veena vadan ki shuruaat Raag Gola mein Mysur Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain, jo Adi Taal mein nibadh hai.
1: Vidwan D. Srinivas begins his veena recital with a composition of Mysur Vasudevachar in the Raag Gaula set to Adi Taal.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was Taniyavartanam played on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant.
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मीडियम वेव 438

6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजे है। अब सुनते हैं मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। परसों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये थी मौसम की जानकारी। इसके साथ ही हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28 और 42 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे देश ने कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये दिन हमें नवाचार, शोध और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तकनीक वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। और श्रोताओं, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। ये दिवस हमें प्रकृति के सुंदर संतुलन और पक्षियों के महत्व को समझने का अवसर देता है। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि हौसले ऊंचे हो तो हर दूरी छोटी लगती है। विज्ञान और तकनीक से विकास करें और प्रकृति व जीव जंतुओं की रक्षा करके इस धरती को सुंदर बनाए रखें।
0: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले पेश है मातृ वंदना।